0: An evergreen hit from Dharmatma. फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है. जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है. तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो. मुकेश जी एंड कंचन जी, इसे आप सुन रहे सनराइज पर आज वेंसडे द 30th ऑफ सितंबर की सुबह. शबनम साही के साथ सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा लिसनर्स चॉइस.
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय स्टार प्लस.
2: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. व्हाट अ प्लेयर.
3: वॉच इंडियाज टॉप 1% एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार.
0: The hit of the hour with Jamin Foods. Enjoy their lip-smacking range of puff bites in mast masala, lemon chili chataka, Mexican jalapeno, and so much more. Jamin Foods, the ethnic taste of India. Sophie in Scotland, Ravinder in Rainham, Leela in Redhill, and to all those who voted, thank you so much. Buhe Bariya on the UK's biggest Asian mix. My name is

0: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, Stone Age से लेकर New Age तक तरक्की हुई है. What a player!
2: Watch India's top 1% every weekend at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
3: The hit of the hour with Jaimin Foods. Make snack time even crunchier with Jaimin Grills. Lemon chili pillow, masala wheels, berry berry berry and so much more. Jaimin Foods, the ethnic taste of India. If you look at popular genres when it comes to cinema, not just Indian cinema, but world cinema, a well-made love story has to be among the most popular genres ever, right? Faiz Ahmed Faiz sahab kehte hain, garbazi ishq ki bazi ho, jo chahe laga do, dar kaisa? अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू वेटिंग फॉर ये प्रेम मोल लिया? कैन वी हैव अ शो ऑफ हैंड्स प्लीज.

0: Bastian. Bell.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: tech bro, cheerful goth, cool vicar.
1: Specsavers, a lot for a little.
0: Nordic chilled and Riviera chic.
1: Has he finished?
0: Vintage 60s, 70s,
1: no, he hasn't.
0: 80s, 90s.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
3: 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
4: Pepe's Piri Piri presents Jubin Nautiyal live in concert.

ड्रिंक शलकना है उंडा बड़ा मीन हाय भी न करे फोन जदो कटदा तो बाय भी न करे डीएम करे सीन रिप्लाई भी न करे ट्रिप ऑन पॉइंट ड्राइव भी न करे।

0: This is Sunrise Nightlife.
1: ओ दुनिया फिरंगे जापा है, फिक्र ही गम का पापा है, अब ना तो बस ये जापा है, फिक्र करे फिक्र